जुसलो पाथौ नेपाल सम्भ चिन्छ सपी खुद थो रेडियो नेपाल खा अनि नादिस जिरुबी पाके नेपाल भाषा समाचार ये या पुण्य इन्द्र जात्रा मिग विधि नक्सा उलेजा जुगुदु मिग सुथे शुभ सायद कथल यो सिन्थना इन्द्र जात्रा विधि नक्सा सुरु जुगु ख शत्रु या त बुका ट्याक्क गु लसिता थो जात्रा।

संयुक्त राष्ट्र संघ नीति नेपाय स्थायी प्रतिनिधि राजदूत लोकबहादुर थापा, अमेरिका नीति नेपाय कार्यवाहक राजदूत शरद राज आरन व न्युरोके नेपाली महावाणिज्य दूत या महावाणिज्य दूत ददिराम भण्डारी पिन्स लसकुश एनादी गुख नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलीय नेतृत्व एनादिसे महासभापति कैता ठेङ्का डिमा प्रधानमन्त्री शाह नेपाली यी कथन शुक्रबार सुथे हिनेसिया सत्रे सत्र यता कघना दिगु ज्याचो दुसा प्रधानमन्त्री या त शुक्रबार सुथे पेता ज्ञाता इले ज्याचो कघानिगु कघाना दिगु ज्या गोसानन्दु सभा या ज्यातल कथ समस्या नीति झिङ्यागु मिनेट तक यी फ्याना त अगु दुसाना राष्ट्र प्रमुख पिन्स झिङ्यागु मिनेट या यी मछेली मुहालीको व्यवस्था यागु दु प्रधानमन्त्री शाह आ यागु भोटे कोशी खुसीबा जलवायु उपाय हुने हलिया समुदाय दति मङ्का खै गु गोसा दु खुसीबा चलना पाए विपद जनस्वास्थ्य खेलाइगु जोखिम यता ध्यान तसे स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय देन्यङ्कया अस्पताल स्वास्थ्य संस्था यता मजी मगागु ज्याखे तयारी अवस्था खे चोनेता उचाउ बिगुदु जल तथा मौसम विज्ञान विभागको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कथा थौ निसे 11 गते तक देया थिति थासे आप्ला व तस्कौ वावैगु पूर्वानुमान यागु दु आ थिति थासे वावया छोङगु लि हाथ्या उपयोगु लि सतर्कता क खाता मन्त्रालय इनाप यागु ख स्वास्थ्य मन्त्रालय मध्यको वा वैगु खुसीबा वैगु चलाउनेगु प्राकृतिक प्रकोप बोलने फैगु व झाका खापा जुइगु लि जनस्वास्थ्य नापाया हाठ्या उपयोग फैगु लि

खासमा सुविया देशना दि गुवेकया सचिवालय थागुदु अथियान संयुक्त राष्ट्र संज्ञा चे छगो गुमा सबया लसत्या संयुक्त राष्ट्र संज्ञा मुख्यालय न्युयोर्क मिहिक जर्मनी आर्थिक वाली तथा विकास मन्त्री रिम आला बाली राडो भान नपा नाप्लाना दिगु दुसा नाप्लाको झोले वेकलाम पुनर्निर्माण नापा जलवायु उत्थान शिल विपद पूर्व तयारी व क्षमता अभिवृद्धि खे लगानी मागुली बबिया दिगु दुसा नाप्ला जिहाजोले मन्त्री खनाला खुसीबा सन्जुगु तधङ्गु जनधन्य क्षेत्रीयता जर्मन सरकार व जनता पङ्कु सहानुभूति एके बद्धता ग्वालियाता कयल सहना देशना दिल अथियान संयुक्त राष्ट्र संज्ञा महासभा लसत्या मिग न्युयोर्क जुगु नाप्लाज्या फिल्यान विदेश मन्त्री पाल्टो नेन नेपालले आ वोङ्गु खुसी बाव चलखन जुगु जनधन्य तकया दुख पङ्का दिगु मन्त्री खनालिया सचिवालय थागु दुसा अथियान परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाला मेघ संयुक्त राज्य अमेरिका न्युयोर्क भारतीय विदेश मन्त्री डाक्टर एस शङ्कर नापाना नापाना दिगुदु नाप्लागु झोले परराष्ट्र मन्त्री खनाना नेपाली आ वङ्गु कष्टन जागु भोटेकोसी खुसीबा भारत सरकार हो भारतीय जनता पङ्कको एकबद्धता हो थथे लल हागु महतन जागु ग्वालिया त कया लसहना देशना दिगुदु संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव एन्टोनियो गुटरेस नेपाल विपद जलवायु संकट

0: बैठके सांसद पिसा नखाचखा इले राजमार्ग दिन व्यस्त जुइगुली इलेहे जोखिममा जागु सडक भिङ्केता व भोटेकोसी खुसी बासा तना चोपी पिन्त एकदर प्रणाली समयिक सीमा घोषणा व द्रुत मृत्यु दर्ता या मागु अभिभावक सीमा मचामस्तेगु नितिम विद्यालय के ढिबामायाक शिक्षा व्यवस्था या मागु नापा हलचोलाया विशेषण सरकार या ध्यानको सल्लाह दिगु दुसा प्रतिनिधि सभा मेगु बैठक थौ छिन्छता इला निसिन चोनीगु घोषा दु सरकार आफ्ना वाविको सम्भावनाके ध्याने तया बिपी राजमार्ग या देके गुज्या ट्र्याक च्याके गुज्या दिक गुदु विश्व वन्यजन्तु कोष WWF नेपाल न रसोया भोटे कोशी खुसी बासन लिचुला पिन्त उद्धारो राहत पुनस्थापना नीति छगु करोड नेगु लाख ढेपा ग्वालिया गुदु राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नापा प्रधानमन्त्री नापा जुया चोना दी महा दी गुली कार्यभार कगना दिमा अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले नाप्लाना दिगुदु राष्ट्रपति भवन शीतल निवास मिगो जुगु नाप्लाज्या आन्हना चुगु थिति विशेषण सल जुगु राष्ट्रपति स्वकीय सचिवालय जानकारी बिगुदु छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नापा राष्ट्रिय महिला आयोग आर्थिक दन 2082-83 अध्यक्षीय प्रतिवेदन दूत बिगुदु राष्ट्रपति भवन शीतल निवास मिगो जुगु ज्याज होले आयोग अध्यक्ष कमला पराजुले प्रतिवेदन ललहना दिगु राष्ट्रपति निजी सचिवालय धागुदु संघीय सदन यानिगु सदन बैठक थौँ चोनिगु गोसादु सुथेसिया झिन्छता एलेसिया दरबार चोनिगु प्रतिनिधि सभाया बैठकीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतम ठेवामायाका कानुनी ग्वाली नपाया विधेयक 2083 निहवया दिगु ज्याज दुसा अथेना थिथि बैठक या चुनिगु गोसा तनन्दु नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति गगन कुमार थापा प्रतापक डाक्टर सुरेश राज शर्मा मधुगुलिता कया बिचाहाका दिगुदु सभापति थापा मेघसनिल सामाजिक सञ्जाल पाक्यम वरिष्ठ शिक्षाविद प्रतापक शर्मा मधुगुलिता कया दुःख पङ्का दिगु ख कोरोना नाकासम भदौ 10 गते लिपा जग यास खुइपेङ्गु कन्टेनर दोछि व गुइगु विद्युतीय सवारी ज्वल इभी गाडिया भन्सार जाँच पाँच जुगु मुस्ताङ भन्सार कार्यालय प्रमुख विदुर चुडाला जानकारी बिहा दिगु दुसा फ्लाइट दुवै बुधबार निश्चित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ नियमित उडान यहाँ कगुदु पोखरा विमानस्थल 2079 पु 17 गते निश्चित यहाँ गु जुसाना नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान दासा जुया मचुङ्गु ख आ दुबई पोखरा दुबई रुटे नित नियमित उडान यहाँ गु विमानस्थल महाप्रबन्धक जगन्नाथ निरोला जानकारी बियादिगु ख आदेश पिने अपुख पाकिस्तान अफगानिस्तान दत्ती हान कचौन यहाँ गुदु पाकिस्तान स्थानीय अधिकारी पिसा अफगान तालिबान सेना चच्ची पाकिस्तानी सीमा चौकी मोटार व मेगो हलजोलस आक्रमण यागु धागुदु काबुल दशा थम सुरक्षाकर्मी अज्यागु छुन ज्यामयागु धागुदु अफगान तालिबान सन् 2021 अफगानिस्तान सत्ता ल्याउने धुकानी टिटिपी पाकिस्तानी सुरक्षा बलदथि आक्रमण उपकको पाकिस्तान दाबिदु आ मौसमीय जानकारी थौ कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश हिमालय पहाडी लगाएको थासे व कर्णाली सुदूर पश्चिम प्रदेश हिमालय पहाडी लगाया मोथासे मलनापा लाप्सा तोया मध्यम टकया वाइगु चपु कुहाइगु सम्भावना दुसा मध्य प्रदेश व कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश तराई लगाया यक्को थासे सुदूर पश्चिम प्रदेश तराई लगाया छुन थासे मलनापा लाप्सा तोया मध्यम टकया वाविगु सम्भावना दुसा कोशी बागमती गण्डकी प्रदेश मो थासे कोशी बागमती प्रदेश पहाडी लगाया छगुनीगु थासे आप्लाउ वाविगु सम्भावना दु मध्य प्रदेश व कोशी प्रदेश तराई लगाया मो थासे थाकुफे वैगु नापा सम्भावना कुबिगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या धापुदु वङ्गु निपे गौसा यहाँ सोनिगया क्वाज निपेङ्गु डिग्री सेल्सियस दति चोना दशा थाउनिने यहाँ सोनिगया क्वाज नि सुङ्गु निसे नि यागु डिग्री सेल्सियस तकत सोनिगु दुकुमादु थौ सुथे ये सोनिगले याता इजुया पी नेगु मिनेटे लुयावोगो सूर्य सनिल खुता इजुया सुङ्गु मिनेटे बी रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार कोचाल चिताइले नेपाली भाषा समाचार नेनादिस शुभ
1: गर्भावस्था र सुत्केरीको समयमा आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्यको ख्याल राखौं। गर्भवती महिलाले कम्तीमा 8 पटक गर्भ जाँच गराऊ। गर्भ रहेको 16 हप्तासम्म 20-24 हप्तामा 32 हप्तामा र 36 हप्तामा गर्भ जाँच गराउँदा 800 रुपियाँ नगद भत्ता पाइन्छ।
2: तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुति गराउँदा आवश्यक प्रयोगशाला परीक्षण र जटिलताको उपचार निशुल्क हुन्छ। साथै हिमालमा 3,000 पहाड भित्री मधेश र काठमाडौँ उपत्यकामा 2,000 तथा तराईमा 1,000 रुपियाँ यातायात खर्च उपलब्ध छ।
1: सुत्केरी

यी रेडियो नेपाल हो। अब सरस्वती राई दनवारकबाटै दनवारी भाषा समाचार सुन। आजसुको पाँच दिनसम्म मुलुकक मुख्य लहरीमा पानीक सतह बढाइ पार्लार पहिला अनुमान कर्लरछिक। जल तसु ऊर्जा आयोगक सचिवालयभित्र

लासो फ्याफिल्ला तिनी मञ्जुश्री सम्म 2862 तालो मेनिङ लाला छेपा चुइसेसुम विक्रम सम्म 2083 साल असोज लाला छेपा भ्रे नारे बिहिबार चु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ साङ्गरी राङ्द डेनमुला ङा सूर्य मोक्तान क्युइथेन ऊर्जा आयोग लोनखाङला जल विज्ञान थेन जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र भाल पूर्व अनुमान महाशाखा से तिनी एन्से हारे दोन हिल्ला स्योङ्गदेरी ग्रेन भाल खबरे खाम्सेलम राङ्ब मुला बेसे पाङ्ब मुला महाशाखाला भाल खेनपो सौहार्द जोसिसे कोसी नारायणी कर्णाली महाकाली रङमा ग्रेन ग्रेन स्योङथेन गान्धीकादेरी भाल खबरे खाम्ला विमान सतर्कता बारे मोइजेनला बहिन्ना महाशाखा सचिव विशेष भाल पूर्वर्मान बुलेटिन री कोसी नारायणी कर्णाली महाकाली कन्काई कमला बबई स्यार्थेन नुप गान्धीरी नुन भाल खबरे खाम्ला बेसे पाङ्ब मुला नाचन खाबा अनुमान अनुसार कोसीला सप्तकोशी तमोर अरुण दुधकोशी तामाकोशी थिइन् सुनकोशी राङमा गान्धीरी घाँडे दोना ग्रेन भाल खाबरे खाम्ला बेसे पाङ्बा मुला नारायणीला नारायणी त्रिशुली बुढी गण्डकी मर्स्याङदी सेती थिइन् काली गण्डकी गान्धीरी नन् भाल खाबरे खाम्बा अनुमान लाभ मुला चुराणुलासी कर्णालीला कर्णाली भेरी तिला नुपसेती महाकाली कन्काई कमला बागमती राप्ती तिनाउ बाण गङ्गा स्यार राप्ती थिइन् बबाई गन्धेरी भाल खाबरी खाम्सेला मुला बेसी पाङ्ब मुला तिनी ताप्लेजुङ हेन्से कञ्चनपुर दोनाला लामान जुङ्गदेरी मुबा जाजा ग्रेन स्योङ्गदेरी ग्रेन भाल खाबरी खाम्बा म्याङ्ब मुला बेसी बुलेटिन रिप्रिभ मुला महाशाखाला भाल खेन्पो जोसिसे गान्धी थिइन् स्योङला कुनी थिइन् जोखिम मुबा ग्लारी टिबन खाबा हिल्बा त सतर्कता बरिनुन् मोइजेन लाभ मुला युल्डी ग्रेन नाम ताइसी भाल धुइथेन ब्लुम्बरङमा विपत्ला घटना तबारी खाम्बा म्याङमा सही लुइथेन चाबासे स्वच्छता ब्लोनखाङ से लुइथुम्ला लामन सतर्कता सिटीबारी मोइजेन लापमला मौसम पूर्वानुमान महाशाखा सचिव सूचना दच्यासी ब्लोनखाङ से प्रदेशलाई लुई सामाजिक विकास ब्लोनखाङ लुई सेवा विभाग लुई विज्ञान प्रतिष्ठान थिइन सङ्घीय अस्पताल तबारी खाम्बा जोखिम च्याङ्नलाबारी थिइन प्रभावकारी गेलाबारी खाम्तोबासे तोबारी खाम्बा व्यवस्था टिक्नलाबारी मोइजेन लापहिन्ना ब्लोनखाङ से सार्वजनिक विधा कुनु लुई गेन्दुन ने के लबाका देता सम्पर्क रिटिबारी थेन विपत्ला दुईरी योने बेबा योना खबरी खम्बाला से तयार ता सिटिबारी नन निर्देशन पिन मबला प्रदेश लुई अस्पताल केन्द्र दा विसाम निचुसे ब्लिनुन घण्टा सिंहबारी ब्लोनखाङसे मोइजेन लाभमुला चुराणुलासे याम्बु महानगरपालिकासे विपत जोखिम दा च्याङ्नालाबारी पूर्व तयारी थिएन प्रतिकारियल संयन्त्र दा सक्रिय सोसी जिन मम्बुला बेसी बाङ्बामुला याम्बु महानगरपालिकाला घेतेनमा ग्रेनपो सुनिता डङ्गोल्ला चोहोबाङ रेटिबा महानगर स्तरीय विपत व्यवस्थापन समितिलाई चिसाङसे ढल मङ्गल नाली थिएन क्यासपिटला नियमित सफाई लाभा उद्धार लाभा से तयारी अवस्थारी थान्बा सूचना पिनमा ठिम द ज्याबसोभा थिएन ओडा तह हेन्से सुरक्षा निकायका दे डिक्सी प्रभावकारी घे लाभा निर्णय लाभ हिन्ना चुराणुनासी काभ्रे पलाञ्चोक जोङ्ग्री ग्रेन नाम ताइसी भाल खबरी खाम्बा से भाल थिएन धुइला जोखिम द च्यासी बिपी राजमार्गला काभ्रे पलाञ्चोक रे मुना ब्लिरे सवारी साधन सेङमारी काभ निर्णय लाभ मुला मनसुन प्रतिकारीय कमान्ड पोस्ट काभ्रे पलाञ्चोकला तिनमा ठिबचे साङसे तिनी हेन्से चिसे घि कुनु दोना न्यासेला घाङ्यामा हेन्से सोल घाङ्यामा दोना बिपी राजमार्गला काभ्रेरी सवारी साधन सेङमारी काभ निर्णय लाभ मुला बेसे ग्रेनजोङ अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारी सुन्दामुला रोङसाब्लोन शिशिर खनालसे जलवायु पोसे ठुङ्न लाभा विपद ग्याम प्रभावित नेपाली पुनर्स्थापना थिएन पुननिर्माण लाभारी मुख्युल्ला रोतो मला विशेष संक्षेप मला संयुक्त राष्ट्रसङ्घला बेचुइसे गेक्छ ग्रेनवालरी बोकिनबारी सेङ्बा जी सेभेन विकास ब्लोन स्तरीय चिसाङ्री नेपाली तिलै दुई गाँच जलवायु पोसे ठुङ्न लाभा विपदलाई फेरि ल्याउ मथान्छुबान ब्लोन खनालसे पुनर्स्थापना जलवायु वित्त विपद पूर्व तयारी लामन पक्षीय वित्तीय रोथेन ज्योमथुम्ला ताम्रे जी सेभेन से रो लासेपिनमारी मैजन लासुपहिन्ना चुनुन गुङ्री अमेरिका से नेपाल दा करोड सोमसे लाख चुई डलर पिन्सेला थापा मलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई बेचुइसे गिक्छ ग्रेनवाल्डी बोकिनमारी न्युयोर्क रि मुभा रोङसा ब्लोन शिशिर खनाल दा ग्लेटिम मामिला सम्बन्धी अमेरिका रो रोङसा ब्लोन एलिसन हुकर थिएन रूप्तामा टाङ्गा पिन्सेला मलाई विशेष संक्षेप हिन्ना चुराणुलासी ब्लोन खनालसे नेपाली कलोलो खापा भालसे प्रभावित तबग्लारी पुनर्स्थापना थिएन पुननिर्माण लाबारी रोलासे पिनबारी जर्मनी दानुन मोइजेन लासुबमला
प्रतिनिधि सभालाई तिनीलक्षी साङ्री ठिम न्याय थिएन संसदीय मामिला ब्लुन सोभिता गौतम से ठिम रोला सिपिनमा सम्बन्धीलाई विधेयक 2083 थान्सिपमला चिसाङ्री ब्लुन गौतम से न्यायिक प्रक्रिया आसे बाकादेश ठिमला रो किनबारी खाम्बा याङताम सुनिश्चित लबारी ठिमथेन ठिम सबारी विद्युतीय ठिमला पहुँच लेना लबारी खाम्बा ठिमेनोन विधेयक रिपाबमला विशेष संक्षेपमला चिसाङला विशेष दुई री सांसद गदेश नेपाल डी गोर्ङी चिसे गिक जोङरी मुबा जोखिम्री मुबा ग्लिङ गोइकादे मुबा थेन जलवायु पोरी नेपाललाई च्याङना योगदान मुसाइनुन थेला ग्रेन असर नासिटी दोबासे संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई ग्रेन वाल डेकाइबलुन बालेन्द्र सासे जलवायु न्याय थेन ज्योमदा सोनला बतामदा प्राथमिकता पेनमारी खाम्दल विषय सुनबमला चुबिमङ्गा छ ठिम न्याय थिएन संसदीय मामिला ब्लुन सुविधा गौतम से संवैधानिक निकाय रि गेलाबत दान पकादेसे दोहोरो सुविधा याङमा ल आयाङमाला लक्ष्य ठिम सुबारी छ बमला विषय सुङ्क्षेप बमला यो व्यवस्था थिएन सुशासन समितिलाई तिनटी बची साङ्री संवैधानिक निकायला दान पोकादेला पारिश्रमिक सेवाला सर्थेन सुविधा सम्बन्धी गिक्षा संशोधन विधेयक 2083 फेरि सैद्धान्तिक थिएन संशोधन प्रस्तावला मूलमेगा देथेन काठुइला सुबान ब्लोन गौतम से युल्ठिम अनुसार नुन संवैधानिक निकायरी सेवा निवृत्त तथा ग्रेन तहला कर्मचारी नियुक्ति लाभ ठिम मुसाइने मुबासे नुन दोहोरो सुविधा काबारी विधेयक ज्ञान ठिम बाबरे छे बहिन्न विषय संक्षेप बमला ब्लोन गौतम से सेवा निवृत्त तथा कर्मचारी दिप्य नियुक्त किन्से बिरान खाला सेवा सुविधा आकिन गई विषय ठिम बाबरी छे बहिन्न विषय नुन संक्षेप बमला चुनाव सरकार से रसुआ जोगला भोटेकोसी गन्दीरेखामा भार प्रभावित जाजाकोला गदेदा विशेष संरक्षण लबारी थिएन पुनर्स्थापना लबारी प्राथमिकता पिनमान खाबमला विषय संक्षेप बमला प्रतिनिधि सभालाई चिसाङ्री सुङमन डोलप्रसाद अरियाल द दुई ऋषि राङला लिङ थान्सिमान जामेकोला जाजाकोला लैङ्गिक अल्पसंख्यक थिएन सामाजिक सुरक्षा ब्लोन सीता बादिसे रसुवाला भाल प्रभावित गोर चुइसे घा चुङला जाजाकोलाका देदा माइबा उद्धार लाभा थिएन पुनर्स्थापना लाभारी सरकार से लोलो लोलो निकाय थिएन संयन्त्र ज्ञान गे लाभन मुला विषय संक्षेप मुला चुनासी ब्लोन बादिसे भाल प्रभावित ज्ञानमा गान्छुम अपाङ्गतामा मि सुत्केरी थिएन जिउङ्गेला जामेकोलाका देदा सुरक्षा लाभारी थिएन संरक्षण पिनमारी ल्यामान ग्लागदे सोसिजिनमा मुला विषय नुन संक्षेप मुला चुनासी प्रतिनिधि सभालाई तिनीलाई चिसाङ्री पूर्वाधार विकास ब्लोन सुनिल लम्साल से फोहोर मैला व्यवस्था विधेयक 2083 फेरि विचार लदोजी विषय प्रस्ताव थान्छु मलाई राष्ट्रिय सभालाई तिनीटी बच्ची साङ्री सांसद गदेसे तिलाई रे नाम ताइसेला विवाह गाछन् सूचना खबा अनुसार भालथेन ढुइला जोखिम बुबा थुम्री मुबा ह्युलबादा सतर्कता नलाबारी सरकारलाई ध्यान छ्याङ नलाबुमला सांसद गदेसे भोटे कोसेरी खापा भाललाई अध्ययन नबारी राष्ट्रिय सभा चेनुन विशेष समिति सोबारी माग लाबुमला चुरानुलासी भोटे कोसेरी खापा भाल से प्रभावित तबा ह्युलबादा चुनाम से दिपेन अर्गु दुङ्गाल काप्पा मुला विशेष सुङमान सांसद गदेसे जोखिम तबारी खाम्बा ग्लारी मोबा मिदा दुई ऋण सतर्कता नलाबारी सूचना दोन लाबारी मैजन लाबुमला काठमाडौँ विश्वविद्यालय केयुला संस्थापक रो कुलपति थिइन् स्यार्खेनपो प्राध्यापक डाक्टर सुरेश राज शर्मा दा राजकीय सम्मानलाई छ्याम्रे तिनी मेपिनमा मुला तिनी पशुपति आर्यघाट्री स्यार्थेन क्लाङमा ब्लुन सस्मित पोखरेल से डोङमा शर्मालाई लुइरोरी राष्ट्रिय झण्डा नान्सी श्रद्धाञ्जली फुल्छुबमला शर्मा दा मेपिनमा दुईरी नेपाल प्रहरीलाई टुकुडी से सलामी फुलबमुबा शर्मा तेलमा मान्ला बताङ्री याम्बुला ह्याम्स अस्पताल डी ब्रेचुसे डुदिङरी डङबमुबा नेपाल राष्ट्र बैङ्क थिएन सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाललाई गुङ्री वित्तीय साक्षरता थिएन वित्तीय समावेशिता सम्बन्धी सूचना थिएन साङ्गीय प्रसारण लाबारी सम्झौता लाबमुला राष्ट्रिय प्रसारण ग्याम हुल्ला नाम्सा नाम्सा दोन टिबा हुल्बादा लोलो लोलो ग्योइरी साङ्गोर थिएन वित्तीय जानकारी गति पिनमारी सम्झौता लाभ हिँड्न सम्झौता पत्र री सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाललाई कायम मुकायम ग्रेन प्रशासकीय अधिकृत आरती चटौत थिएन नेपाल राष्ट्र बैङ्क गभर्नर गेदिमला वित्तीय समावेशिता थिएन ग्राहक संरक्षण महाशाखाला निर्देशक सुशील पौडेल छे या एक्ला बमला उसेम ग्रेन प्रिभा गति घामघामरी खाबल लामा रेदाङसे तोबा से गदेला माग लेसिटी दुईरी सरकार से बजार री ग्लोब चुङमाला साई थिएन आपूर्ति व्यवस्थापन निगरानी लेन लाबमला चाबसे चिनी ग्यासराङमा आरेना आतबसे सजिलो छन् याङतोबा थिएन लेबासाइदा काबारी वाणिज्य आपूर्ति थिएन उपभोक्ता संरक्षण विभाग से बजार अनुगमन लाबारी ती बहिन्न विभागलाई सूचना अधिकारी अनिल किराँतीसे दान्दे चिनीला छ्याम्री ल्यामन चाबसे बजार रे आस्यापल्ली छ प्रिभागा देता च्यासी बजार अनुगमन लाबारी टोली परिचालन लाबमला विषय सुङमा मुला चुनन साङ्गुरका देला छ्याम्रे तिनी त तामाङ साङ्गुर जिन्जी रेडियो नेपाल ज्ञानमा लसुगु लसो फ्याफुल्ला

0: ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास्थिक विजय झासा सुनल झा मैथिली भाषामा समाचार। प्रतिनिधि सभाकै आजुक बैठकमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल गन्दगीकी व्यवस्थापन विधेयक 2083 पर विचार विमर्श कायल जाकेका प्रस्ताव प्रस्तुत कलनि छ। यी विधेयक उपरके सैद्धान्तिक विचार विमर्शमा सांसद सब सरवला आ नै सरवला गन्दगीकी अलग अलग व्यवस्थापन क सरवला गन्दगी स खाद ग्यास तथा ऊर्जा उत्पादन कायल गेला पर उचित व्यवस्थापन आ प्रदूषण न्यूनीकरण कायल जा सकैत अछि बतौलनि। सांसद सब स्थानीय तह के गंदगी व्यवस्थापन के लेल आवश्यक प्रविधि स्रोत साधन आ निर्णय प्रक्रिया में अधिकार द जिम्मेवारी सुनिश्चित करबाक अहिना नाला आ गंदगी के कारण जनस्वास्थ्य में पड़े वाला हानि के न्यूनीकरण करबाक लेल जनचेतना अभिवृद्धि आ वातावरण संरक्षण के सिद्धांत विधेयक में समावेश करबाक चाही सुझाव देलन। ऐसे पहिने के बैठक में कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सुभिता गौतम निःशुल्क कानूनी सहायता संबंधी विधेयक 2083 प्रस्तुत कलन। मंत्री गौतम न्यायिक प्रक्रिया सहज बनावा असमर्थ पक्ष के कानूनी सहायता प्राप्त करवाक अधिकार सुनिश्चित करवाक लेल कानूनी सेवा में विद्युतीय प्रणाली के पहुंच विस्तार करवाक प्रावधान सेहो विधेयक में समावेश कायल गेल जानकारी दिलन। बैठक के विशेष समय में सांसद सब नेपाल में कैष्टा जोखिमपूर्ण हिमताल रहल जलवायु परिवर्तन में नेपाल के न्यून योगदान भेल बावजूदो ऐ के गंभीर असर भोग पड़ रहला सा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह जलवायु न्याय या हिमाल संरक्षण के मुद्दा के प्राथमिकता के संग उठेबाक चाही बतौलन। राष्ट्रसभा के आजुक बैठक में सांसद सब निरंतर वर्षा के कारण पूर्व सूचना हिसाबे बाढ़ आ भूस्खलन के जोखिम रहल क्षेत्र में उच्च सतर्कता अपनेबाक लेल सरकार के ध्यान आकर्षण करौलन अछि। बैठक में सांसद सब भोटी कोसी बाढ़ के संबंध में अध्ययन करबाक लेल राष्ट्रसभा में सेहो विशेष समिति गठन करबाक लेल मांग कलन। भोटी कोसी बाढ़ से प्रताड़ित जनता के लगातार वर्षा से फिर दोसर चिंता थपायल कहित सांसद सब जोखिमपूर्ण क्षेत्र सब के पहचान कर समय में सतर्कता के सूचना पहुंचेबा लेल ध्यान आकर्षण करौलन। सांसद सब अंतर्राष्ट्रीय मंच सब में नेपाल जलवायु परिवर्तन के मुद्दा के प्रभावकारी रूप में उठाव नहीं सकला सा जलवायु न्याय मार्फत भोटी कोसी बाढ़ के क्षतिपूर्ति पाव कठिन भेल चर्च करत मुद्दा के मजबूत सब सरोकार वाला सबके ऐ पर लाग चाही बतौलन। भ्रष्टाचार नियंत्रण सुशासन के लिए नया सरकार संग जनता के अधिक अपेक्षा रहल कहत सांसद सब सेवा प्रवाह के सहज बनावा जनता के राहत देवा सन काज करबाक लेल सरकार के ध्यान आकर्षण करौलन। अना सांसद सब अस्पताल में देखल गेल सर्पदंश के रोगी के लिए अत्यावश्यक दवाई के अभाव समाधान करबाक लेल सेहो मांग कलन। संघीय संसद के संसदीय सुनवाई समिति नेपाल सरकार से विभिन्न 13 देश के लिए सिफारिश भेल प्रस्तावित राजदूत के दसई से पहिने ही सुनवाई निष्कर्ष लगेबाक प्रक्रिया आगू बढ़ौलक अछि। समिति के आई बैसल बैठक से प्रस्तावित राजदूत सब के सुनवाई के प्रक्रिया शुरू करे 10 दिन के समय द क उजुरी आह्वान करबाक निर्णय कलक अछि। सभापति समिति के सभापति बोध नारायण श्रेष्ठ प्रस्तावित राजदूत के बायोडाटा अध्ययन हो सब पेश कने कार्ययोजना प्राप्त उजुरी के मुख्य आधार बनाकर सुनवाई आगू बढ़ाल जेबाक बतौलन। हुनक हिसाबे प्रस्तावित राजदूत के बायोडाटा समिति में प्राप्त भ चुकला से के अध्ययन तत्काल आगू बढ़ाओल जा सकते अना ओ सब पेश करवला नतीजा में आधारित कार्ययोजना के अध्ययन उजुरी के समयावधि संगे आगू बढ़ाओल जा सकते सभापति श्रेष्ठ बतौलन। ओ उजुरी वाहक समिति के करवला तैयारी के काज के आगू बढ़ावित सुनवाई प्रक्रिया सकधेर शीघ्र निष्कर्ष लगेबाक तैयारी रहल बतौलन। ओ आसीन 2 गते बैसल मंत्रिपरिषद के बैठक से भारत चीन आ संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 13 देश में राजदूत सिफारिश कने छल। बीतल राति से मध्य प्रदेश के जिला सब में हल्का से मध्यम वर्षा भ रहल अछि। अखन के हल्का तथा मध्यम वर्षा धान बाली के लेल नीक भेल बावजूदो भारी तथा अति भारी वर्षा भेल खंड में ओहि पश्चात के आवय वाला बाढ़ भूस्खलन तथा डुबान प्रति मध्य प्रदेश के सुरक्षा निकाय हाई अलर्ट में रहबाक संगे नदी तथा तटीय क्षेत्र के नागरिक सब के सचेत करा रहल अछि। मध्य प्रदेश के बड़का नदी क्षेत्र में बस्ती भेल नागरिक के 9 गति से भ सकबाक भारी तथा अति भारी वर्षा प्रति सचेत बनबैत बस्ती सब में माइकिंग करबाक तथा अन्य माध्यम से सूचना प्रवाह भ रहल मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि। मध्य प्रदेश में बड़का नदी के रूप में बागमती कमला लाल बकैया खाड़ो रहल अछि त 6 से जतेक छोट छीन नदी सब रहल मंत्रालय जानकारी दिलक अछि। सूर्य विनाश के कारण से नदी के सतह ऊपर उठला से कनिको वर्षा आ बाढ़ में नदी के पानी बस्ती में पैसा के जोखिम रहला से नदी किनार के बस्ती के विशेष रूप में सजग बनेबाक काज भेल अछि। एम्हर काल्हि 9 गते से 11 गते धरि होबय वाला कहल गेल भारी अति भारी वर्षा पश्चात आबय वाला स्वाभाविक प्राकृतिक विपदा के सामना करबाक लेल प्रदेश सरकार सब प्रकार के तैयारी कयने मधेश प्रदेश विपद व्यवस्थापन समिति जनौलक अछि। मधेश प्रदेश के गृह संचार तथा कानून मंत्रालय के आयोजना में चारू सुरक्षा निकाय के सहभागिता में भेल प्रदेश विपद व्यवस्थापन समिति के बैठक में भारी वर्षा पश्चात आबय वाला बाढ़ भूस्खलन तथा डुबान के सामना करबाक लेल सब प्रकार के तैयारी प्रदेश सरकार कयने मधेश प्रदेश के गृह संचार तथा कानून मंत्री फकीरा महतो के जानकारी दिलन। ओ संभावित विपद के सामना के लेल प्रदेश सरकार चारू सुरक्षा निकाय के सहयोग में सब प्रकार के तैयारी कयने चर्च करत सुरक्षा निकाय के आवश्यक साधन स्रोत सहित हाई अलर्ट में राखल गेल बतौलन। आय से आबय वाला 5 दिन धरि देश के प्रमुख नदी में जल सतह बढ़वाक पूर्वानुमान कयल गेल अछि। जल तथा ऊर्जा आयोग के सचिवालय अंतर्गत के जल विज्ञान तथा जल स्रोत अनुसंधान केंद्र बाढ़ पूर्वानुमान महाशाखा ई अनुमान कयलक अछि। महाशाखा के बाढ़विद सौहार्द जोशी कोसी नारायणी कर्णाली महाकाली लगात प्रमुख नदी तथा सहायक नदी में जल सतह उल्लेख्य बढ़वाक पूर्वानुमान करत उच्च सतर्कता अपनेबाक लेल आग्रह कलन। महाशाखा जारी केने विशेष बाढ़ पूर्वानुमान बुलेटिन से कोसी नारायणी कर्णाली महाकाली कनकाई कमला बवई पूर्वी राप्ती तथा पश्चिम राप्ती नदी में जल सतह बढ़वाक संभावना रहल जनौलक अछि। पूर्वानुमान हिसाबे कोसी के सप्तकोसी तमोर अरूढ़ दूधकोसी तामाकोसी आ सुनकोसी लगायत नदी में आबय वाला 5 दिन जल सतह उल्लेख्य रूप में बढ़वाक संभावना रहल अछि। नारायणी के नारायणी त्रिशूली बूढ़ी गंडकी मरस्यांगदी सेती तथा काली गंडकी नदी में जल सतह बढ़वाक पूर्वानुमान अछि। अहिना का कर्णाली के कर्णाली भेरी तीला तथा पश्चिम सेती महाकाली कनकाई कमला बागमती पूर्वी राप्ती तीनाऊ बाणगंगा पश्चिम राप्ती अबवई नदी में जल सतह बढ़वाक जनाल गेल अछि। महाशाखा के हिसाबे किछु दिन किछु नदी तथा जलाधार में आकस्मिक बाढ़ के जोखिम सेहो रहल अछि। आई तापले जुंग से कंचनपुर धरि के विभिन्न जिला के छोट छीन नदी तथा नदी में बहाव उल्लेख्य बढ़वाक आ किछ स्थान में आकस्मिक बाढ़ के संभावना रहल बुलेटिन में उल्लेख अछि। बुलेटिन हिसाबे तापलेजुंग पाँचथर इलाम झापा मोरंग सुनसरी तेरथुम धनकुट्टा सखुआ सभा भोजपुर खोटांग उदयपुर सिरहा धनसा महोत्तरी सरलाही सिंधुली ओखलढुंगा सुलखुम्बी दोलखा रामेछाप सिंधुपाल्चो काभ्रे पलांचो काठमांडू भक्तपुर ललितपुर मकवानपुर रौतहट बारा परसा रसुआ नुआकोट धादिंग गोरखा चितवन नवलपरासी पूर्व तथा पश्चिम रूपंदेही तनहू कास्की लमजुंग स्यांगजा मनांग मुस्तांग म्यागदी बागलुंग पर्वत रुकुम पूर्व तथा पश्चिम रोलपा सल्यान बांके बर्दिया सुर्खेत दैलेख जाजरकोट जुमला कालीकोट अछाम जोटी डरिलधुरा बैतडी दारचूला कंचनपुर लगायत जिला में छोटछी नदी में बहाव बढ़ सकबाक संभावना अछि। महाशाखा के बाढ़विद जोशी नदी तथा नदी के तटीय क्षेत्र जोखिमयुक्त स्थान में बसवास कनिहार नागरिक के सतर्क रहबाक लेल आग्रह कयलनि अछि। मध्य प्रदेश सरकार सीमा सुरक्षा तथा भन्सार चोरी नियंत्रण के नियंत्रण करबाक उद्देश्य के संग सशस्त्र प्रहरी बल के 20 मोटरसाइकिल हस्तांतरण कयलक अछि। मध्य प्रदेश के गृह संचार तथा कानून मंत्रालय खरीद केने ई मोटरसाइकिल मंत्रालय में आए कार्यक्रम के बीच मध्य प्रदेश के गृह संचार तथा कानून मंत्री फकीरा महतो सशस्त्र प्रहरी बल नंबर 2 छिन्मस्ता वाहिनी के प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक विष्णु प्रसाद भट्टराई के मोटरसाइकिल के चाबी तथा ब्लूबुक हस्तांतरण कलन। प्रदेश के खुला सीमावर्ती क्षेत्र के संवेदनशीलता के ध्यान में राखि भन्सार के कड़ाई के संग नियंत्रण आ नियमन करय में सहज होय के लेल सवारी साधन प्रदान कयल गृहमंत्री फकीरा महतो जानकारी दिलन। विशेष कर सीमा क्षेत्र में होबय वाला नियमित गश्ती निगरानी तथा सुरक्षा व्यवस्थापन में मोटरसाइकिल के उपयोग से सहजता हाथ से विश्वास मंत्रालय के रहल अछि। मोटरसाइकिल हस्तांतरण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के गृह संचार तथा कानून मंत्री फकीरा महतो मध्य प्रदेश में सीमा सुरक्षा तथा राजस्व छली के नियंत्रण करय में सहयोग पहुँचत अ के लिए मोटरसाइकिल प्रदान कयल गेल बतौलन। महोतरी के गौशाला नगर पालिका प्रतिकूल मौसम के जोखिम के मद्देनजर करत नगर भीतर संचालित संपूर्ण विद्यालय 2 दिन के लिए बंद करबाक निर्णय कयलक अछि। बुध दिन गौशाला नगर पालिका सूचना जारी करत आसिन 8 आ 9 गते 2 दिन नगर क्षेत्र के सामुदायिक संस्थागत तथा धार्मिक विद्यालय में पठन पाठन बंद रहबाक जानकारी देने छे। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान हिसाबे बंगाल के खाड़ी में विकसित न्यूनचापीय प्रणाली तथा संभावित चक्रवात के प्रभाव से मध्य प्रदेश लगाए क्षेत्र में भारी वर्षा अन्हर बिहारी बाढ़ तथा डुबान के जोखिम रहल कहित विद्यालय बंद करवाक निर्णय कैल गेल सूचना में उल्लेख है। प्रतिकूल मौसम के कारण विद्यार्थी शिक्षक तथा कर्मचारी के आवागमन में कठिनाई भ सकबाक आ सुरक्षा जोखिम बढ़ सकबाक कारण विद्यालय बंद कैल गेल सूचना में उल्लेख है। नगर पालिका संबंधित सब विद्यालय के ई निर्णय कार्यान्वयन कर लेल तथा विद्यार्थी शिक्षक अभिभावक के आवश्यक सतर्कता अपनेबाक लेल आग्रह कलक है। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास से सुन रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।
1: हामी रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणबाट बोलिरहेका छौं। अब सुन्न सक्नुहुनेछ प्रदेश समाचार।

ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। आगामी तीन दिनों में देश के विभिन्न स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना को देखते हुए मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने सतर्क रहने का किया है आग्रह। भारी वर्षा को ध्यान में रखते हुए प्रमुख राजमार्गों पर रात के समय वाहनों के संचालन पर लगाई गई है रोक। भोटेकोसी बाढ़ प्रभावित ज्येष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार काम कर रही है। महिला बाल बालिका मंत्री सीता बादी ने यह दी है जानकारी। नेकपा एमाले ने पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को वरिष्ठ नेता के रूप में किया है चयन। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी अमेरिकी शी जिनपिंग के बीच आज व्हाइट हाउस में मुलाकात होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। कल आश्विन 9 गते से 11 गते तक विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश की संभावना को देखते हुए नेपाल पुलिस ने विभिन्न राजमार्गों पर रात के समय वाहनों के संचालन पर रोक लगाई है। पुलिस मुख्यालय द्वारा आज दोपहर जारी सूचना के अनुसार पृथ्वी राजमार्ग सहित विभिन्न राजमार्गों पर रात के समय वाहनों के संचालन पर रोक लगाई गई है। पृथ्वी राजमार्ग होकर चलने वाले वाहनों के आवागमन पर आज रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक पूर्ण रोक लगाई गई है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार देश भर में मानसून सक्रिय रहने के कारण सिद्धिचरण लोक मार्ग पर आज से असोज 12 गते तक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी वाहनों और पैदल यात्रियों के रात में आवागमन पर पूर्ण रोक लगाई गई है। मकवानपुर जिले में कांति राजमार्ग तथा भैंसे भीमफेदी देवराली कूले खानी होते हुए काठमांडू आने वाली सड़क पर भी शाम 7 बजे से वाहनों के आवागमन पर पूर्ण रोक लगाई गई है। इसी तरह बीपी राजमार्ग पर शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक वाहनों के संचालन पर रोक लगाई गई है। साथ ही नारायणगढ़ मुगलिंग सड़क खंड पर आज रात 8 बजे से कल सुबह 5 बजे तक वाहनों के संचालन पर रोक लगाई गई है। पुलिस मुख्यालय के भारी बारिश और संभावित विपद जोखिम को देखते हुए यात्रियों से आवश्यक सावधानी अपनाने का आग्रह किया है। प्रतिनिधि सभा की बैठक में कचरा प्रबंधन विधेयक 2083 पर विचार किया जाए के प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में पूर्वाधार विकास मंत्री सुनील लम्साल ने कचरा प्रबंधन विधेयक 2083 पर विचार किया जाए के प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सैद्धांतिक चर्चा में सांसदों ने कहा कि जैविक और अजैविक कचरे का अलग अलग प्रबंधन कर जैविक कचरे से खाद, गैस तथा ऊर्जा का उत्पादन किया जाए तो कचरे का उचित प्रबंधन करने और प्रदूषण कम करने में मदद मिल सकती है। सरकार ने रसुआ के भोटेकोसी बाढ़ प्रभावित बच्चों के विशेष संरक्षण, पुनर्स्थापना और पारिवारिक पुनर्मिलन को प्राथमिकता देने की बात कही है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में महिला बाल बालिका लैंगिक तथा अल्पसंख्यक और सामाजिक सुरक्षा मंत्री सीता बादी ने बताया कि बाढ़ प्रभावित बुजुर्गों, दिव्यांगों तथा गर्भवती और प्रसूता महिलाओं की सुरक्षा के लिए आश्रय केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नुआकोट और धादिंग में महिलाओं तथा किशोरियों के लिए 10 सुरक्षित केंद्र स्थापित किए गए हैं। विस्थापित बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सुविधा सहित देखभाल केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में पूर्वाधार विकास मंत्री सुनील लम्साल ने फोहर मैला व्यवस्थापन विधेयक 2083 पर विचार किया जाए के प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इससे पहले कानून, न्याय तथा संसदीय मामलों की मंत्री शोभिता गौतम ने निशुल्क कानूनी सहायता संबंधी विधेयक 2083 प्रस्तुत किया। बैठक में सांसदों ने जलवायु परिवर्तन, हिमतालों से उत्पन्न जोखिम, आगामी भारी बारिश और बाढ़ की संभावना को देखते हुए पूर्व तैयारी तथा नदी किनारे के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की मांग की है। इसी तरह महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के लिए रोजगार, सांस्कृतिक संपदा संरक्षण, किसानों के लिए समय पर खाद तथा रूस में रह रहे नेपाली श्रमिकों और विद्यार्थियों की सहजीकरण सहित विभिन्न समसामयिक विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया।
राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल ने लगातार हो रही बारिश से उत्पन्न संभावित जोखिम को कम करने के लिए संबंधित निकायों को तैयार रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिक समाज, स्थानीय निकाय और संबंधित संस्थाओं के बीच समन्वय बढ़ाने तथा नागरिकों को संभावित जोखिमों के बारे में समय पर सूचित करने को कहा है। बैठक में लोक सेवा आयोग की आर्थिक वर्ष 2081-82 की वार्षिक रिपोर्ट और विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति की आर्थिक वर्ष 2082-83 की वार्षिक रिपोर्ट पेश की गई। प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर के दौरान उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दीपक कुमार शाह ने महंगाई और कालाबाजारी नियंत्रित करने के लिए तीनों तह की सरकारों के बीच समन्वय तथा बाजार अनुगमन को प्रभावी बनाने की आवश्यकता बताई। इसी तरह स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता ने भोटेकोसी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती, स्वास्थ्य शिविरों के संचालन और आवश्यक दवा तथा उपकरण उपलब्ध कराने की जानकारी दी। बैठक में सांसदों ने लगातार वर्षा के कारण बाढ़ और भूस्खलन के जोखिम वाले क्षेत्रों में उच्च सतर्कता अपनाने तथा भोटेकोसी बाढ़ के बाद गठित विशेष समिति में राष्ट्रीय सभा के सांसदों को भी शामिल करने की मांग की है। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक आश्विन 12 गते दोपहर 1:15 पर होगी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।

0: प्राप्त गरौ।
1: प्ले स्टोर वा एप स्टोरबाट सजिलै नेपाल टेलिकमको एप डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
2: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
3: अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेकी पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी को पार्टी की वरिष्ठ नेता की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी केंद्रीय कमेटी की तीसरी बैठक ने सचिवालय के प्रस्ताव को अनुमोदन करते हुए यह निर्णय किया। भण्डारी पार्टी की पूर्व उपाध्यक्ष भी है। बैठक ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओली की राजनीतिक रिपोर्ट को भी पारित किया। आश्विन 5 से जारी केंद्रीय कमेटी की बैठक आज संपन्न हुई। संभावित भारी से अति भारी बारिश के कारण बाढ़, भूस्खलन और डुबान जैसी आपदाजन्य स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्रालय ने स्वास्थ्य क्षेत्र को उच्च सतर्कता अपनाने का आग्रह किया है। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा द्वारा जारी सूचना को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने प्रदेश के स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान और संघीय अस्पतालों को जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रभावी प्रतिकार्य के लिए आवश्यक व्यवस्था मिलाने का अनुरोध किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग व्हाइट हाउस पहुंचे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए एक दूसरे का अभिवादन किया है। स्वागत कार्यक्रम के बाद ट्रंप और सी व्हाइट हाउस के भीतर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच होने वाली बातचीत में व्यापार, आर्टिफिशियल एजेंसी AI, ताइवान और दूसरे अहम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और चीन ने दोनों देशों के सामने मौजूद प्रमुख मुद्दों पर मिलकर जबरदस्ती प्रगति की है। व्हाइट हाउस में स्वागत समारोह के दौरान ट्रंप ने कहा कि दोनों देश एक अधिक संतुलित व्यापारिक संबंध बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत में अमेरिकी किसानों और पशुपालकों के लिए नए बाजार अवसरों पर भी चर्चा हो रही है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आगामी 3 दिनों में देश के विभिन्न स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना को देखते हुए मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने सतर्क रहने का किया है आग्रह। भारी वर्षा को ध्यान में रखते हुए प्रमुख राजमार्गों पर रात के समय वाहनों के संचालन पर लगाई गई है रोक। भोटेकोसी बाढ़ प्रभावित ज्येष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार काम कर रही है। महिला बाल बालिका मंत्री सीता बादी ने दी यह जानकारी। नेकपा एमाले ने पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को वरिष्ठ नेता के रूप में किया है चयन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी अमेरिकी शी जिनपिंग के बीच आज व्हाइट हाउस में होगी मुलाकात। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
4: फोनमा कुरा गर्दा आवाज स्पष्ट नआएर दिक्क लाग्छ।
5: अब अनुभव गर्नुहोस् नेपाल टेलिकम 4G भोल्टे।
4: भोल्टे भोइस ओभर LTE अब तपाईँको हरेक कुराकानी अझ स्पष्ट, अझै जीवन्त।
5: HD भोइस क्वालिटीसँग कम ब्याकग्राउन्ड नोइज र अल्ट्रा क्लियर आवाज।
4: यस्तो अनुभव मानव तपाईँले कुरा गरिरहनु भएको व्यक्ति तपाईँको छेउमै हुनुहुन्छ।
5: र अझ रमाइलो कुरा,
4: फोनमा कुरा गर्दै गर्दा पनि चलाइरहनुहोस् 4G स्पिड इन्टरनेट।
5: Clear calls र fast internet एकै साथ।
4: सेवा सुचारु गर्न आफ्नो फोनमा *444 हाश डायल गर्नुहोस्। 4G Volte
2: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
6: झण्डु आयुर्वेद,
7: सबै रोगको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गरिने झण्डु नेपाल प्राली तथा विशेषज्ञ डाक्टर क्लिनिक पुतली सडक काठमाडौँ।
6: प्रेसर, सुगर, बाथ, डिप्रेसन, मोटोपन, युरिक एसिड, ग्यास्ट्रिक, पायल्स, दम, अनिद्रा लगायत यौनजन्य समस्याको उपचार गरिन्छ।
7: क्यान्सरका रोगीहरूको लागि पनि विशेष प्रकारको उपचार पद्धति उपलब्ध छ।
6: विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह बमोजिम औषधि पठाउने र टेलिमेडिसियनको समेत सुविधा छ।
7: झण्डु नेपाल प्राली, पुतली सडक, काठमाडौँ, पद्मोदय स्कुलको पूर्वपट्टि। फोन नम्बर 01-4530-418।
0: भोलि असोज 9-11 गतेसम्म विभिन्न स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने सम्भावनालाई लक्षित गरी नेपाल प्रहरीले पृथ्वी राजमार्ग सहित विभिन्न राजमार्गमा रातको समयमा सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। पृथ्वी राजमार्ग भएर सञ्चालन हुने सवारी साधन आज बेलुका 8 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म आवागमनमा पूर्ण रोक लगाइएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार देशभर मनसुन सक्रिय भइरहेकाले सिद्धिचरण लोकमार्गमा आजदेखि असोज 12 गतेसम्म बेलुकी 6 देखि बिहान 6 बजेसम्म अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सवारी साधन तथा पैदल यात्रीको रात्रिकालीन आवत जावत पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको जनाएको छ। मकवानपुर जिल्लाका कान्ति राजमार्ग भैंसे, भीमफेदी, देउराली, कुलेखानी हुँदै काठमाडौँ आउने सडक पनि बेलुका 7 देखि सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। त्यसै गरी बिपी राजमार्गमा बेलुकी 5 देखि बिहान 5 बजेसम्म सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। साथै नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा आज बेलुका 8 देखि भोलि बिहान 5 बजेसम्म सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ।
8: लागू औषधको उत्पादन, सञ्चय, ओसार पसार, बिक्री, वितरण तथा सेवन कानून तह दण्डनीय अपराध हुन्। यस्ता गतिविधिमा आफू पनि नलागौं र अरूलाई पनि लाग्न नदिऊ।
9: जनहितका लागि रेडियो नेपाल
10: आउँदैन, त्यसैले बाढी पहिरोको जोखिम हुने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने महत्त्वपूर्ण कागजात र आपतकालीन सामग्री तयारी अवस्थामा राख्नुहोस्।
11: हल्लाको पछि नलागि आधिकारिक सूचना र मौसम सम्बन्धी जानकारी लिनुहोस्।
10: रेडियो नेपालद्वारा जनहितका लागि।
12: आदरणीय श्रोताहरू, हाल देशका विभिन्न स्थानहरूमा वर्षा भइरहेको छ। आगामी केही दिन भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेकोले विपद सम्बन्धी पूर्व सूचना, पूर्व चेतावनीको पालना गरौं। परिस्थिति अनुसार सवारी आवागमन बन्द गर्न गराउन सहयोग गरौं। विपद बारे चासो राखौं, चनाखो बनौं। सार्वजनिक सेवा प्रसारण, रेडियो नेपाल।

रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। जो चलते रहते हैं मंजिल की ओर, वही एक दिन इतिहास बनाते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत है रेडियो नेपाल की प्रस्तुति और आपके प्यार व मिठास भरे हिंदी सदाबहार गीतों के कार्यक्रम में। मैं हूँ रमिता यादव और तकनीकी तौर पर हमारा साथ दे रहे हैं प्राविधिक मित्र पुष्परत्न वज्राचार्य जी। दोस्तों, मीडियम वेव 576, 648, 684, 792, 810 और 1143 किलोहर्ट्ज के साथ साथ FM बैंड 98 और 103 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से www.radionepal.gov.np और www.onlineradionepal.gov.np पर एक साथ आप मधुरिमा कार्यक्रम को लाइव सुन रहे हैं। इसे आप रेडियो नेपाल के मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन सकते हैं। इसके अलावा बहुत से मित्र मधुरिमा हिंदी फेसबुक

पेज के माध्यम से लाइव देख भी रहे हैं। अगर आप भी कार्यक्रम को लाइव देखना चाहते हैं तो मधुरिमा कार्यक्रम के फेसबुक पेज मधुरिमा हिंदी को लाइक और फॉलो करें ताकि कार्यक्रम शुरू होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप कार्यक्रम के लाइव वीडियो के साथ जुड़ पाएं और मन की बात लाइव कॉमेंट के जरिए साझा कर पाएं। और आप यदि किसी कारणवश लाइव न भी देख पाए तो बाद में भी इसे मधुरिमा हिंदी फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। साथ ही इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि बहुत से नए मित्र रेडियो नेपाल के साथ जुड़े और मधुरिमा के इस बड़े परिवार का हिस्सा बने। हर गुरुवार रात 10 बजे के हिंदी समाचार के तुरंत बाद करीब 50 मिनटों के इस कार्यक्रम में आज बारी है आपके प्यार और मिठास भरे पत्रों की। ये पहला पत्र है शिवाजी चौक कटनी मध्य प्रदेश भारत से अनिल ताम्रकार जी का। लिख रहे हैं, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं को हमारा प्यार भरा अभिवादन। गीत के बोल हैं परदेशियों से न अखियां मिलाना। फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले। शिवाजी चौक कटनी से अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकार, रजन रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हन्नी, यस और उनके मम्मी पापा। कार्यक्रम में ये गीत सुनाने की कृपा करें।

दोस्तों, ये गीत आप सभी ने सुना फिल्म जब जब फूल खिले से, जो कि सन 1965 में रिलीज हुई थी। इस गीत में आवाज है लता मंगेशकर की और इस गीत के गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार है कल्याण जी आनंद जी। ये पत्र है सुमन थापा जी का, पोखरा कास्की से लिख रहे हैं। नमस्कार कार्यक्रम प्रस्तोता जी, मैं सुमन थापा पोखरा से आपका कार्यक्रम सुन रहा हूं। आपके कार्यक्रम में बजने वाले गीत और श्रोताओं के संदेश मुझे हमेशा सकारात्मक ऊर्जा देता है। मैं सभी श्रोताओं को कहना चाहता हूं कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आज की परेशानी कल की सफलता की वजह बन सकती है, इसलिए मेहनत करते रहें और अपने सपनों